कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता के वडचीरा रहाओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा किया वडे आईया। तुद विण सिद्धि किने न पाईया कर्म मिले नाही थाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे भूख उत भूख है खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपताशा है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाही तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर

नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कित न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है। जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै नाम।

0: जिस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैर दास

कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। कृपा करके जदों गुरु किसी दे हृदय विच गरीबी टिका देंदा वसा देंदा ते जिनू गरीबी गुरु नानक दे घरों मिल जाए, नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। ए गरीबी है जी, धन दी गरीबी नहीं है, निमाणापन। तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनोप, सरम खंड विच जाके फिर जेड़ा ना घाड़त घड़ी जांदी है, जिवें टकसालां दे विच बच्चियां दी घाड़त किवें घड़ी जांदी है, उहनां नूं शब्द नाल गुरबाणी नाल गुरबाणी दी संथिया दे के घड़िया जांदा है, संथिया दे के गुरबाणी। साड़ी कौम दे विच मैं कहांगा कि असी तंता योगा के संस्था कह लो, टकसाल कह लो, दमदमी टकसाल, जदों दी ए प्रसिद्ध हुई टकसाल प्यारे हो, इन्हां ने अपने ते दायरे विच आउण वाले बच्चियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी संथिया दित्ती, पर हर चाहवान नूं देशां विदेशां विच वी इन्हां दा अज यतन सफल होया। जिन्ना चिर संथिया असीं लैंदे नहीं, गुरबाणी दा शुद्ध उचारण नहीं होंदा। गुरबाणी नाल इस टकसाल ने, दमदमी टकसाल ने बहुत बच्चियां नूं, सिखां नूं, कौम नूं जोड़िया। एक कौम दे उत्ते एक बहुत वड्डा एहसान ते भावें असी ना कहीए, देन बहुत वड्डी है दमदमी टकसाल दी। पर इत्थे घड़िया की जांदा गुरु नानक दे घर विच, तिथे घाड़त घड़ीए। घाड़त भी बड़ी अनूप, बड़ी सुंदर है, उपमा तो रहत बहुत ही सुंदर। गुरु के प्यारेओ, ओ घाड़त दियां तांकियां गल्लां कथियां ना जाए, इन्नी मिठी बोली, इन्ना मिठा शील सुभाव बन जांदा इस खंड विच पहुंचन वाले दा प्यारेओ, ओदियां गल्लां दे विचार ते कथन नहीं कीता जा सकदा। उहनां दी विचार कह लो गुरु वर्गे ही हो जांदे ने। एक वाक है, सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है। फिर आवाज देंदे गुरु साहब, आओ गुरबाणी बनी है। गुरबाणी वर्गे, गुरु वर्गे हो जांदे ते उहनां दीआं मिठियां सोहणियां जुबान दीआं गल्लां नूं कौन हुण कथे, कौन बयान करे, कथन तों बाहर आई है। इन्नी मिठास, इन्नी सुंदरता, इन्नी निम्रता हलीमी उहनां दे जीवन विच आ जांदी। ते जे को कहे, जे को कहण दा यतन करे, पिछों पछताएगा कि मैं ये मुकम्मल नहीं कह सकिया। घड़िया की जांदा है फिर गुरु नानक दी टकसाल विच, तिथे घड़िए सुरत, सुरती नूं घड़िया जांदा, मत नूं घड़िया जांदा, मन नूं घड़िया जांदा, ते मनुख दी बुद्धि नूं घड़िया जांदा। ऐवें कोई मुकम्मल गुरु दा मुरीद नहीं बन सकता प्यारी। ये सरम खंड दियां बरकतां ने, तिथे घड़िए सुरत, मत, मन, बुद्ध, ते तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। वड्डे वड्डे देवतियां दी वी जिहड़ी उत्थे घाड़त हुंदी, गुरु नानक दी सोबत विच, गुरु दी संगत विच, सरम खंड विच पहुंच गए। इत्थे भी आम मनुख पहुंच के देवतियां समान हो जांदे ने। गुरु नानक दे घर दी सोबत एहो जी है गुरु के प्यारेओ, केवल जुबान दी मिठास ही नहीं, जीवन विच निम्रता।

ऐसे सूरवीर योद्धे जो कहनी ते कथनी दे मालक बन गए। शीस देन दी लोड़ आई फिर कहंदे ने महाराज नू प्रवान हो गए, सुनहरी इट बन के महाराज दे घर विच लग गए। भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, हरजिंदर सिंह जी दा सदा वास्ते जी गए, उन्हां दियां बदौलत उन्हां दियां कीतियां कमाइयां दा हिस्सा असी अना रहे हां, असी खा रहे हां। सतगुरु कहंदे ने ऐसे सूरवीर महाराज किसी किसी नूं निवाजदा है, किसी दी कोई सेवा किसी दी कोई सेवा। वो गुरु नानक दे घर विच सुनहरी इट बन के लग गए ने ते दुनिया दे हर कोने विच पंथ दे दिलां विच जिउंदे। किसी ने सवाल किया भी बंदा कई वारी शरीर करके ढिला हुंदा है, किसी फकीर ने सवाल किया भी मर के भी जिया जा सकता है, फकीर नू पुछे भी मर के भी जिया जा सकता है, वो कहता हां। कहते किवें? पंथ दे दिलां विच, संगतां दे दिलां विच ए थां किसी कर्मा वाले नू नसीब होती है। आओ लवाइए हाजरी और उन्हां शहीदां नू सुखदेव सिंह जी सुखा, हरजिंदर सिंह जिंदा, उन्हां दियां असीसां लईए।

साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन आपो न है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। पुरत हारै जो अंतर नाम, सर्व मै पिखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै, नानक उह अपरस सगल निसतारै। अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दरस। परत्रय रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन न सुनै काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बाशना मन ते तरै। इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नहे कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा ने बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नेतनीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै।

राह दूर कथना कथि न आवै तोट काथ काथ कथि कोटि कोट कोट देदा देलै दे थक पाहे जुगा जुगंतर काहि काहे हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे प्रवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या पौ अपार आखह मंगह देह दे दात करे दातार पीर के अगै रखी है जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए किता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मानु नानक गाविय गुणी निधान गाविय सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया सुमाई गोरे

मने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुझ छुटा न काए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पक्ष प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिद्धि संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार, मन्ने तरै तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवे न पिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पू, संतोख थाप रखिया जिनसू, जे को बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर के तापार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कला, मेहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता हुए, किता तान सुवालियो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता फसाओ कुकवाओ, तिस्ते हुए लक दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मूल लिवलाई तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक काहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी शाला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाणु, अखरा सिर संजोग बखाणु, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लैया ओ धोए, भरियै मत पापा कै संग, ओह तो पैना वै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहि, कर कर करना लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही खाहु, नानक हुक्मी आवहु जाहु, तीरथ तप दया दत दानु, जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाउ, अंतरगत तीर्थ मल नाउ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति माह कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडती, जे हुवै लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखण लेख कुरान।

नानक आखण सब को आखै इक तू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सोहै पाताला पाताल लख आगास आगास ऊड़ कूड़क भाल थके वेद कह निकवास सैस अठारह कहन तथे बास लू इक धात लिखा हुए तां लिखी है लिखे हुए विनाश।

नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वाल पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काया कुह करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़ी है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते

हैं, धन है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनीन है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है,

इंद्र सीक है, इंद्रलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयाचंद,

समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे

राजी समस्तस्तताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अभे हैं प्रभु हैं अजू हैं अधिश हैं अभिश हैं भुजंग प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं परमाथे।

चक्र जन मरण विहीन, चक्र बकर फिरे चत्र चकमानी पुरतीन, लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जाप, आदिवनाद मूरत था प्यो सबै जेथा, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्वरच्यो स्वयं भवगणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म धाम सो भरम रहत अभूत लख अभे, संग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दायका, माप रूप अमीक अनुस्त एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत, अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनभेक, सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग रेख, परम वेद प्राण जा कह नेत भाखत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवहि वह चित, मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार, महिमा अपार आसन अपंग।

अंग। गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन।

शरीर में कि सर्वंग कली है, कि सर्वंग दली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौण है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिश है, कि सर्वत्र राज्य है, कि सर्वत्र साज्य है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहु, कि सर्वत्र पाहु, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र भूख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, कि सर्वत्र जाप्य है, कि सर्वत्र थाप्य है, कि सर्वत्र पान्य है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र इंद्र

दे सुबंसर भागे सुसरबा अनुरागे। तेरे भुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है। विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है।

हर पर अगंजु, हर नर पर पांजु, अनगन पर नाम उन्मन सला, हर नर अखंड, पर नर अमंडु, अन पवनास मुनमन प्रकाश, गुनगन पर नाम जल तल मुदाम, अनचित अंग असुन अपांग उपमा पार, गत मित उदार जल तल अमंड, दिश्विज अपांडु,

अपार आडीठ धर्म वत ढीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के करण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कल खंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत्य अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तृत्य अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृता अमृत है जपा कृत्य अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पवपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सुरभाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भस है जस की जस है पुजंग प्याचंद नमो सूर्य सूर्य।

त्रिपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज लख पख अकाल दयाल अनेक भेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी नराग नरंगे नरूपे नरेखे करमंग भरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासी अगंजुल नामे समस्तुल निवासी निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुलक निंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्नि में हरियंग करियंग करिमुल रहिमे छत्र चक्र वर्ती चित्र

बाणिया सिरबाणी जिनको नदर कर्म हुवे हृदय तिना समाणी। पीबो अमृत सदा रहो अरंग जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावे सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना कहा कछु न जानी। चित जिनका हिरलिया माया बोलन पैरवाणी। कहना सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा हुआ सुमाऊ। शब्द छेती मन मिलया सच्चा लाया पाऊ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ। शिव सकता पाए कह करता आपे हुकुम रताए। हुकुमरताया वे कह गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन हुए मुख शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो हुए कस्यो लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी। गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। ते गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। माता की उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनु क्यों विसारी है बड़ दाता जे अगन मह आहार पहुँचावे। वो सुनो क्यों पोह न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कह नानके बड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सभी को जे ही करता खेल रचाया। जात पाणा ता जमिया परवार भला पाया। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मर वरताया। माया जितर विसरै मोह पजै भाउ दूजा लाया। कहना नु गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। अरे आप मुल कह मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले जिसनो सिर सौंपिया विचो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रह अर उसै मन आए। हर आप मुलक है भाग जिन्ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन बनजारा हर रास मेरी मन बनजारा। सतगुर तेरा सजानी हर हर नित जप्यो जीहो लाह खट्यो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा। कह नानक रास मेरी मन हुआ बनजारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित जिचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लग आए। इहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए। कह नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए। हे शरीरा मेरे आ हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल निक सखिए शोक दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी। गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरे आस जग मैं आए। कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी। हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कै हर बिनवर न कोई। कह नानके नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए। सच है सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी। सच अलक विडानी ताकि

कथ कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहु, पवित्र हुओ साचे सुन नैनो पठाई। हर जीव गुफा अंदर राखे वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नवनिध तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखे वाजा पवन वजाया। इहो साचा सोहेला सचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर सचे, जिथे सुधा सच त्यावे सचो त्यावे, जात दुभावे गुरमुख जिना बुझावे। सत्सवना का कसम जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहेला सच।

तन पाईए नानका से तन होवे चार। ज्ञान नगली टूनिये कतना करड़ा सार, क्रम मिले ता पाईए और हिकमत हुकम कुआर। थोड़ी न तो कहे जी आपनी।

मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार कड़ पांडे इट्टा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सत।

करे सचता पर जानिए जातम तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बह रह करे निवास ससब ना होए दारू पाप कढ़े तोए नानक को खाने बेनती जिन सच पल्ले हुए।

68 तीर्थ जी नावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पल्ले संसार तिन

0: वडपादी कोटि कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्होंने अपार रहमत बख्शिश तर्स किया है अमृत वेले की दात चोली च पाई है सतगुरु जी कृपा करन बख्शिश करन इसी तरह हर रोज मालक दे चरणा दा प्यार मालक दी निघी गोद दा आनंद मिलदा रहे जिदे करके मिलिया होया मनुखा जामा साडा सफला हो सके। अज दा महान दिहाड़ा शहीद भाई तारू सिंह जी दा जन्म दिहाड़ा है। सतगुरु जी कृपा करन आप सारे संगतां नूं बहुत बहुत बधाईयां कि साडे ते कृपा बख्शिश हो जाए उन्हां दे पाए हुए पुण्यां ते तुर पईए जिदे करके आया सफला हो सके। सो हुण आप जी दे सन्मुख आप जी नूं गुरमत विचारा राही निहाल कर रहे हैं पंथ दे महान विद्वान गुणी जनत इस्तकार योग ज्ञानी जसबीर सिंह जी खुश दिल जिन्हां ते बड़ी कृपा रहमत बख्शिश है तिना पासो आप जी अमृतमी बाणी दीआं विचारां सरवण करो पुना चुकां दी खिमा पते सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਡੜੇ ਸੇ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇਖੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ

शंत महला तीजा कर दूजा एकोंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहेलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो।

अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लेव लगा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तिन अण दिन हर गुण

जुग में राम नाम निस्तारा, सजण आए बुठे घर माही, हर गुण गावे तृप्त अगाही।

सजन आए वुठे कर माही, सजन आए वुठे कर माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कार योग सत्संग जी, आप जी वडभागी हो अमृत वेले तो। शाहे शहनशाह शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पाक पवित्र हजूरी विच हाजरियां परदियां, पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनी हजूरी रागी जथे पासों संपूर्ण श्री आसा दी वार दा शब्द कीर्तन।

कोई जीव संसार सागर नो नहीं तर सकता। इको एक तरीका सलीका गुरु नानक दे घरों प्राप्त हुंदा। बाबा कबीर जी ते डंके दी चोट ते इंसानियत नू कह रहे ने मनुख नू, हर के नाम बिन किन गत पाई। परमेश्वर दे नाम तो बिना दसो भाई किसे नू मुक्ति अज तक मिली है? कर्म कांडा नल मुक्ति नहीं मिलती, पार उतारा नहीं हुंदा, दान कीतियां भी नहीं हुंदा, पुन कीतियां भी नहीं हुंदा। फिर की करिए? गुरबाणी यही कह रही है, कवि जी दस दे हर के नाम बिन किन। वो कौन ऐसा बंदा एक मिसाल दसो जेड़ा कर्म कांड करके तर गया होवे? कोई भी एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा। अज धन गुरु अमरदास सचे पातशाह भी बचन कर दे, जगत विच परमेश्वर दे नाम नाल ही हरेक जीव दा पार उतारा हुंदा, ते गुर ते उपजै शब्द विचार। गुरु दी संगत करन दा एक लाभ गुरु अमरदास महाराज बचन कर दे बहुत प्रमुख मिलता है। आत्मक जीवन नवा जीवन जीवन दा सलीका ढंग गुरु कोलो जदो मिल जाए ना, फिर ही कोई गुरमुख प्यारा गुरु दे शब्द नू विचारदा। गुरु दे शब्द नू ओदों विचारदा जदों उस दे अंदर गुरु राही नवा आत्मक जीवन जीवन दा फलसफा टिक जाए, गुरु कोलों मिल जाए। फिर उस शब्द दी विचार करदा ते गुरु शब्द विचारा, जिमें जिमें गुरु शब्द नो विचारदा है राम नाम प्यारा, उनु परमेश्वर दा नाम बहुत प्यारा लगन लग पैंदा है, ते जिस कृपा करे सो पाए। धन गुरु अमरदास महाराज कृपा कर दे भाई, केवल गल्लीं बातें ए दात प्राप्त नहीं हुंदी, जिदे उत्ते मेरा करता पुरख कृपा करदा ना ओदे ते ओदी मेहर ते कृपा हुंदी, ओनू ए दात मिलदी। ओ गुरु शब्द नू जिवें जिवें विचारदा परमात्मा दी प्रेमा भक्ति नाल ओदा मन पतीजदा मनदा, लगदा राम नाम प्यारा, ओनू प्रभु दा परमेश्वर दा नाम प्यारा लगन लग पैंदा। ए दात ओनू प्राप्त होंदी जिहदे उत्ते ओह मालक कृपा करदा। सहजे गुण गावै दिन राती किल विख सब गवाए, सहज विच टिके आत्मक अडोलता विच टिके फिर परमात्मा दे गुण गांदा रहिंदा भावे दिन होवे भावे रात होवे। अज लोक इत्थे ही टिके होए ने कि रब दा सिमरन कदों करना, किन्ना करना, किवें करना। गुरबाणी ने इना सरल सलीका ढंग तरीका मनुख नू इंसानियत नू दस्या, इन्हें समझन दा यतन नहीं कीता। देखो किन्ना सरल है, ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। साई जवाब दें दे उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। भावे रात तुरे जा रहे हो तां भी जप लो, सौ के उठे हो तां भी, जे बैठे हो तां भी, भाव बैठ के भी उठ के भी चलदियां भी उस मालक नू चेते कीता जा सकदा, उनू सिमरिया जा सकदा है। ते हर वेले जदों चित करे उनू चेते कीता जा सकदा। मेरे सतगुरु बचन करे ने कि जिस कृपा करे सो पाए दात, उनू मिलदी जिहदे उत्ते ओह कृपा करदा। सहजे गुण गावै दिन राती,
आत्मक अडोलता विच टेकियो गुरमुख प्यारा दिन रात हर वकत परमात्मा दी सिफ सलाह गाउन विच लग जांदा फिर किल विख सब गवाए उहदे सारे पाप दूर हो जांदे सब को तेरा तू सब नांका हे प्रभु तू सारे आंदा क्योंकि सारे जीवां नू तू पैदा कीता सब को तेरा सारे जी तेरे ने ते तू भी सबना दाई है तू सबना का मालक है मैं तेरा सेवक हां ते तू मेरा खसम है मालक है बचन ने सब को तेरा हर जीव तेरा ही पैदा कीता होया सबना दा तू मालक है करता है हे अकाल पुरख मैं तेरा सेवक हां तू मेरा मालक है जुग मैं राम नाम निस्तारा मैनू ए विश्वास हो गया कि इस जगत विच तेरे नाम तो बिना किसे एक दा भी पार उतारा नहीं है तेरे नाम नाली हर जीव दा पार उतारा हुंदा है साजन आए बुठे घर माही तन गुरु अमरदास महाराज बचन कर दे जदों रबी सिफ सलाह दे मार्ग ते गुरमुख चलदा ते प्रभु सज्जन जी आके हिरदे घर विच वस पैंदे ने साजन आए वुटे उठना वसना घर हिरदे रूपी घर दे विच हर गुण गामई फिर जिथे आके हिरदे विच प्रभु दा वासा हुंदा ना प्यारे हो ओ सदा लई हर दम हर साह नाल परमात्मा दे गुण गाई जांदा माया वलों त्रिपत हो जांदा रज जांदा अगाई दा मतलब रज जाना तृप्त हो जाना हर गुण गाए करते दे गुण गांदियां गांदियां माया वलों सदा ही तृप्त हो जांदा फिर भूख ना लागे आए फिर उहनूं पदार्थां ते माया दी भुख नहीं लगदी जदों नाम दी भुख लग जे साचा नाम मेरा आधारो जदों सच्चे नाम नूं आधार बनाया साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया सारिया भुखा चलिया जांदिया ने हर गुण गाए गुरु देव बचन कर दे करते दे गुण गा गा के ओ सदा लई तृप्त माया वलों तृप्त हो जांदा है फिर उहनूं मायक पदार्थां दी भुख नहीं चंबड़दी नहीं लगदी देह दिस पूज होवै हर जन की देह दिस दा मतलब है हर पासे हर जगह हरि दे सेवक रब दे प्यारे दी पूज दा अर्थ है पूजा नहीं है इत्थे लफ्ज है इज्जत पत हर जगह ते इज्जत हुंदी है सारे पासे हर स्थान ते जिथे भी वो चला जाए ओदी इज्जत हुंदी है पत हुंदी है किस कारण करके जो हर हर नाम ते आए जेड़ा परमेश्वर दे नाम नूं सिमरदा है ते वो सदा ही सिमरदा रहिंदा है इसलिए रब दे प्यारे जिथे भी जांदे ने उत्थे उहनां दी पत इज्जत हुंदी नानक हर आपे जोड़ विछोड़े हे नानक परमात्मा आप ही किसे मनुख नूं माया दे विच जोड़ के जग दे पदार्थां विच ला के अपने चरणां नालों जदों विछोड़े विछोड़ देवे ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਟੁੱਟਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਬੁਝਿਆ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੇ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਈ ਹੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਦਾ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੋੜਨ ਤੇ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਲੰਬੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਹੀ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ।

साहिब जी, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन,

सब भोकट निश्चय कर्मं कहु नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै निःपलंतस जन्मस्य जावत ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस्य

बंधव कतंच मोह कुटुंब्यते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत।

दुर्लभ देह उदरंत, साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत। सुबंत तोयं

नच दुर्लभं स्वर्ग राजन है, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर है, नच दुर्लभं

परवेणं नच दुर्लभं चतुर्चंचल है। दुर्लभं एक भगवान नाम है, नानक लब्धं साध

त्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता, उपदेशं सम मित्र सत्र है, भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेणु कह खट लक्षण पूर्ण।

अपराधं किल विकमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापितं मृत्यु जन्म

पारा हारा चाक मन निर्मल हो अकलवे कटन हारा। शब्द मरो फिर जीव सदहिता फिर मर न होई, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई। दात दात रखी हते अपने जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे सोट महला तीजा। सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजय गात्मा तद ही पाए, हर का नाम सचा मन वस्या नामे नाम समाय। बिन सतगुर सब जग बौराना, मन मुखंदा सब न जाना झूठा परम पुलाना रहा। त्रै गुण माया परम पुलाया हूं मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर उपर उबो गर्भ जून दुख पाए। त्रै गुण वरता सगल संसारा हूं मैं विच पद खोई, गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता, जो तू करै सो होई, नानक राम नाम निस्तारा सबद हूं मैं खोई। सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप पाहो वंजा राजा गाप है प्यारा। आपे सचा साहो, आपे वंजवा पारिया प्यारा, आपे सच वेसाहो। जाप मान हर हर नाम सला, गुर कृपा ते पाइया प्यारा अमृत अगम थार हाओ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख बोले आप मुहाहो। आपे उजड़ पायदा प्यारा, आप विखाले राहो। आपे आपे ही सब आप है प्यारा, आपे वे परवाहो। आपे आप पायदा प्यारा, सिर आप है चंदड़ा लाहो। आप कराए साक्षी प्यारा, आप मारे मर जाहो। आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंघाओ। आपे सागर बोहता प्यारा, गुर खेवट आप चलाहो। आपे ही चल लंघदा प्यारा, कर चोज वेख पास साहो। आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्स मिलाहो। सोठ महला चौथा, आपे इंड सेत जेर सेतज उत पोज। आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बोमणिया कर सकती जगत परोए। आपे ही सूत तार है प्यारा, सूत खिंचै टह टेरी होए। मेरे मन में हर बिनेवर न कोए, सतगुर विच नाम निदान है प्यारा। कर दया अमृत मुख चोए, रहाओ आपे जल थल। आपे जल थल सबत है प्यारा, आपे करे सुहोए। आपे ही आप निर्मला प्यारा, आपे निर्मल सोए। आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे करे सुहोए। आपे लख न लखिए प्यारा, आप लिखा वै सोए। आपे गैर गंभीर है प्यारा, तिस जे वडेवर न कोए। सब घट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए। सोठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा। आपे थाप थापै, आपे वेख वगसदा प्यारा, कर चोज वेख प्रभ आपै।

Deus querer pra minha fé. A pena onde pai da piara é a pei de abdiapé, a pei mrtapé piara, a pei irasiapé. A pei abu salada piara janan karastrapé, surtmala chanta. A pei candai abtraji, pravia pe tol tulaya, a pei sau a pei manjara, a pei manjkaraya. A pei tarti sajian piara, piche tank chidahaya. मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुर पूरा मीठा लाया रहाव आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वरदा प्यारा जल माटी बंदर खाया आपे पौ पाए दा प्यारा बन बकरी सी हंडाया आपे कास्ट आप हर प्यारा विच कास्ट अगन रखाया आपे ही आप वरदा प्यारा पै अगन न सक जलाया आपे मार जी वायदा प्यारा सा लैंदे सब लुवाया आपे तान दी बाण है प्यारा आपे कार लाया ज्यों आप चलाए तो चलिया प्यारे ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जनती जनत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सोठ महला चौथा आपे श्रेष्ठ उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चा नान आपने ताणिया ताण है प्यारा आपने माणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जब राम नाम निशान सत्संगत मिल त्याए तू हर हर बोल नयावन जान रहाओ आपे ही गुणवर्ता प्यारा आपे ही प्रमाण आपे बख्श कराए दा प्यारा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वर्ता प्यारा आपे ही प्रमाण आपे भगत भंडार है प्यारा आपा आपे देवै दान आपे सेव कराए दा प्यारा आप देवावै मान आपे ताड़ी लाए दा प्यारा आपे गुणी निदान आपे वड्डा आपे प्यारा आपे ही प्रधान आपे कीमत पाए दा प्यारा आपे तुल परवान आपे तुल सुलाए दा प्यारा जन्ना नानक सद कुरबान सुरठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगतू महा आपे गुण गवाए दा प्यारा आपे शब्द सुमहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखा मेरे मन जप राम नाम यो महा आंदे आनंद हो वै बड़ भागी लै गुर पूरा हर लहर हाउ आपे गोपी गां कान है प्यारा बन आपे गौ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश बजाहा कुवलिया पीड़ आप मराए दा प्यारा कर बालक रूप चाहा आपे खाड़ा पाए दा प्यारा कर वेख आप चुजाहा कर बालक रूप पाए दा प्यारा चंडूर कंस के समाराहा आपे ही बला पे प्यारा बल भन्ने मूर्ख मुगदाहा सब आपे जगत पाए दा प्यारा वस आपे जुगत हथाहा गल जेवड़ी आपे पाए दा प्यारा जो प्रभ खींचै त्यों जाहा जो गरबै सो पचसी प्यारे जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दुतके अनेक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म कराया अहंकारी साधु परसुति प्रपाया गोविंद शरण तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत्संग पै साधु जन हृदय मिलिया संत मुरारी रहाओ तू हृदय गुप्त वसै दिन राती तेरा पाओ न बुझे गुवारी गुरु सतगुर पुरख मिलिया प्र प्रगटिया गुण गावै गुण विचारी गुरमुख प्रकाश पाया सांत आई दुर दुर मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा पई तुम्हारी नानक तुल सहज कृपा कर सहज सुख पाया आंदन जागत रहे बनवारी सोठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रह न जाई ज्यो मछली बिन नीरा बिन सह त्यों नाम मैं बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही सांत पाई रहाओ ज्यो चातरक जल जल बिन बिलावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजै हरिया पाए सुपाई मन में भूखे दै दस डोलै बिन नावै दुख पाई जन्म मरै फिर जोनी आवै दरगह मिलै सजाई कृपा करै तां हर गुण गावै हर रस अंतर पाई।

की बाहर को खरा न हो सी सब मिथ्या स्नेही। रे नरकाया हे पुपोर दे उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही। रहाओ तीन संज्ञा कर दे कीनी जल कुकर पस में ही होए अमरो गृह में बैठा करण कारण मिसरोही। अनेक पात कर्मणिय साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापरे फिर पाछे कुछ तो ही। जिन तुम सिर जे सिर जसवारे तिस त्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा तारी मैं सात गोरे ओटर गहे ही। सोठ महला पंजवा गोर पी पूरा पेटियो बड़ पागी मना पया परगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा। अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारा रहा। अंतर जामी करना हारा खोई सोई खसम हमारा निरपो पाए गुरचरनी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होन हारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपने प्रीत प्यारा। वडी वडाई अचरज शोभा कार्ज आया रासे नानक को गुरपुरा पेटियो सगले दुख बिना से। सोठ महला पंजवा सुखिये कौ पिख है सब सुखिया रोगी कै पाण है सब रोगी करण करावन हर स्वामी अपन हाथ संयोगी। मान मेरे जिन अपना परम गवाता तिसका पाणा कोई ना भूला जिन सगलो ब्रह्म पिछाता। रहाओ संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी हो मैं रोग जाका मन व्याप्त ओह जन्म रह बिलती। ज्ञान इंजन जाकी नेत्री पढ़िया ताको सर प्रगासा ज्ञान अंधेर सू जिस नाही बौड़ बौड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक ए सुख मांगे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तहे मेरा मन लागे। सोठ महला पंजवा तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम त्याया सर्व कुशल तब थिया। संतन बिन अवरन दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार ग्रामी किया। रहा कोट पराध मिटा जन सेवा हर कीर्तन जस गाय इहा सुख आगे मुख उजल जन का संग बड़ भागी पाइय। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केत उपमा कही है अगम अंगो चिर सदा मनासी शरण संतन की लही। निर्गुणी जनाथ अपराधी ओठ संतन की आही बूढ़त मोह गृह अंधकूप में नानक ले हो निबाही। सोठ महला पंजवा घर पहला जा कह हिरदा वस्या तू करते ताकि तय आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण धूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन न जाई गुण निदान सुखदाता स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई। रहाओ सो सो कर्म करता है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवा को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सम्माने जाको तो दया बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो ज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपाई कौ नान जस पाए दया लाता को मन ते बिसर न जाई। सोठ महला पंजवा सगल समग्री मोए व्यापी काबूचे कब नीचे सुत न हो ये काहू जितना ओढ़क को न पहुँचे मेरे मन साध सरण छुटकारा। गुर बिन पूरे जन्म मरण न रहे फिर आवत बारो बारा। रहाओ ओह जो परम पुलावा कहिया तिन मैं उतरियो सगल बिसंसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदक नाही काहू बाता है खसम का किया जा को कृपा करी प्रा मेरे मिल साध संगत नाउ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सरना करते उधारा कौ नानक गुर बिन चरिया पूर्ण सत विचारा। सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारियो राम नाम तत सारा किल बिक काठे निमक रादया गुरमुख पार उतारा। हर रस्ते वो पुरख ज्ञानी सुन सुन महातृप्त मन पावे साधु अमृत बानी। रहा
मुक्त भुगत जुगत सच पाया सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता श्रवणी सुनिया रसना गाया हृदय से यसोई करण कारण सिमरा स्वामी जाते वृथा न कोई वड़ा भाग रत्न

आया प्रा मिलो देहो उपदेशा। मान की जय शरण प्री जय कर सुफला मनाइय। सुन मीता जियो पिंड, सुन मीता जियो पिंड सब तने अर्पी जय। इं दर्शन हर जियो पाइय। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन का हर नामा है मीठा। जन नानक गुर कृपा तारी सब कुल निरंजन डीठा। सोठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। सर्व जिया का दाता रे प्रतपालय निसार संभालय। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हरे राध न जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम पर्यो रामदास रहाव। दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा पर पूरी रे। पेग सुन सदा है संग मैं मूर्ख जाने अंदूरी रे। हर बेनत हो मित कर वर्णो क्या जाना हो कैसो रे। करो बेनती सतगुरु अपनाए मैं मूर्ख दे हो कुदे सोरे। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पर आदि धरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे। सुठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत दे स्रोते मिटे सब गया। सहज सहन अर सुख मन नारी ऊद कमल बिकसया। देखो अचरज पया जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध। सो हृदय गुरुदया रहा जो ए दूत मोय बहुत संतावते भयानक पया। करह बेनती राग ठाकुर ते हम तेरी सरनया। जय पंडार गोविंद का खुलिया जय प्राप्त लया। एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दिनो ता डाले अमर न मुआ। भगत पंडार गुरु नानक को सौंपै फिर लेखा मूल न लया। सोठ महला पंजवा चरण कमल से जा का मन लीना से जन तृप्त अघाई। गुण अमोल जसरी दमस्या ते नृसंत्री खाई। हरे आराधे रोग अनदाई जिसनो मिसरे मेरा राम स्नेही। तिस लाख बेदन जाने आई रहा। जे जाने उठ गही प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने। जे नर बिसरिया प्रुग विधाता ते दुखिया मैं गरने। जे गुरमान प्रभु ले लाई ते महानंद रस करिया। जे प्रभु विसार गुर से बेमुखाई ते नर कोर मैं परिया। जित को लाया तित ही लागा ते सोई वरतारा। नानक से फकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोठ महला पंजवा राजन को राजा उर जायो। मानन मैं अभिमानी लोभन मैं लोभी लोभायो। त्यों हर संग रचे ज्ञानी हर जन को ही सुहावे। पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाव। अमलन से अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी। खीर संग बार कहली ना प्रभ संत से हितकारी। विद्या माय विद्यन सी रचिया नैन देख सुख पावे। जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी फूक तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी। नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर जामी। सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तुम सर्व कला क्या ज्ञाता। माधव हम तैसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ। तुम समसाजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो पला हम पढ़ो न जाने तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचै कौ नानकाम यह हवाला। राख संतन कह पाचै। सोठ महला पंजवा कर दूजा मात कर मैं अपन सिमरन दे। तह तुम रखन हारे पावक सागर था लहर मैं तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा रहा। कीते को मेरा सम्मान करना आर्त्र जाने। तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभाने। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा चर चल तुम्हारे। रूडो गुड़ो गैर गंभीरो ऊंचो गम अपारे।
साध संग जो तुम्हें मिलायो त्यो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेख ते नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सुठ महला पंजवां।

संतन से मेरे लेवा देवी संतन से ब्योहारा संतन से हर हमला काटिया हर भगत परे पंडारा संतन मौका पूंजी सौंपी त्यो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहा करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महानंद पय सुख पाया संतन कह प्रसादे कौ नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्माते सोठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छट जानी राम नाम शंकर व्यवहारा पावे पद निर्वाणी प्यारे तुम मेरो सुखदाता गुरपुर दिया उपदेसा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लो मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाई हो रेण तू सगल की मेरे मन तो आनंद मंगल सुख पाई है काल न पाना अंतर भिद जाना ताकि कर मन सेवा कर पूजा हूं मैं मनुआ काल मूर्त गुरुदेवा गोविंद मोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नाम वलेवा नाम नानक प्राण आधारा सुठ महला पंजवा मृतक को पायो तनसा सा विश्रुतान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पैसो ते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ दुख सोग काटायो डेरा नंग आनंद मंगल विश्रामा मन वांछित फल मिले चिंता पूर्ण होए काम इहा सुखा गमुख जल मिट गया मन जाने निरपो भय हृदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाने उठत बैठ धार गुण गावे दुख दर्द परम भागा कहो नानक साके पूर करमा जाका गुर चरनी मन लागा सोठ महला पंजवा रतन छाड़ कौटी कौडी संग लागे जाते कछु न पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरो हर हर नाम परानी बिन से काची दे अज्ञानी रहा मृग कृष्णार सुपन मनोर साकी काछ न मडाई राम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हाव हाव करत बिहाय वरदा जी को काम न कीना ताव तावत न तृप्ता से राम नाम ने चीना साध विकार बिखै रस मातो संख खते असंख खते कर फेरे नानकी प्रभु बिनंती काटो अवगुण मेरे सोठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अपनासी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परमान धेरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अघाई जात कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जात अब संयम ज्ञान तत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा कौ नानक प्रभ कृपा धारी मन तन पय बिगासा सोठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभदाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सौ सुख सहज आनंद मंगल रस चर्ज पई बढ़ाई रहाओ गुर की शरण पै पै नासे साची दरगह माने गुण गावत राध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सुवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुनुतरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद से ती कर आया सुरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम दिन नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अबनासी ताको बिगड़ न को लागे जो सदगुर अपने राखे चरण कमल बसेरे दे अंतर अमृत हारस जाके कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच पुजाई नानक दास ताके बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई सुठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियारा देवन हार न जाने जियो पिंड साज तिन जिन रचिया बल अपनो कर मानै
मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किश करे सोई सोई जाना रह न कछु अछानी रहाओ। जे हवा स्वाद लोभ मद माते उपजे नेक बिकारा, बहुत जोन परम सुख पाया हूं मैं बंधन के पारा। देख वाड़ अनेक पड़ दे मैं परदारा संग फक, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा टक। दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तोंबे ने ओठ नकाई, काढ़ ले हो संसार सागर में नानक प्रभ सरनाई। सोठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो। गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो पाई सत्संग सदा सुख पाई है, हर बिसरन कबो जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीव है, जिसनो कर्म प्राप्त हो वै सो जन निर्मल थी वै। बिघन बनासन सब दुख नासन गोचर नहीं मन लागा, गुण गावत चौथा बनासी आंदन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली, आदि अंत मद नानक को सो प्रभु आबेली। सोठ महला पंजवा पंच पदा बिनसै मो मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी संतो हा बतावो कारी, जित हो मैं गर्भ निवारी। राव सर्वभूत पार।

औखद नाम निर्मल जल अमृत पाये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। औखद नाम जल अमृत पाये, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बच्चा बच्ची ते उन्हां दे माता पिता जी खड़े होने की कृपालता करन जी। सत्कारयोग नवनीत सिंह जी अरदास बेनती करनगे।

0: मेरे को वाइल होना है
1: गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru. Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru. ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ,
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru.